0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know? Do you know? Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
1: ओ याद आया याद आया।
4: बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी, आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिंस फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know?

0: Hello, Miss Scott.
1: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो और मैं हूं सैमुअल और मेरे साथ हैं
2: हिमांशु,
3: नवीन,
4: रोहित।
1: आज है 26 सितंबर और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन।
2: सोचिए, जो हवा आप अभी ले रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जो पानी आप अभी पी रहे हैं क्या वह साफ है? आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक ही है।
5: विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है। इस साल की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य, मजबूत प्रणाली, स्वास्थ्य समुदाय।
6: हमने निस्कोट कैंपस में कुछ छात्रों से पूछा, स्वस्थ पर्यावरण का मतलब क्या है?
7: मेरे लिए इसका मतलब है प्रदूषण मुक्त जीवन।
6: और आपको इस विषय में क्या लगता है?
8: मुझे लगता है स्वच्छ जल, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और हरा भरा स्थान।
1: बिल्कुल सही कहा। क्या आप जानते हैं WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,30,00,000 मौतें सिर्फ पर्यावरण कारणों से होती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,
5: पर समाधान हमारे हाथ में है।
2: तो आइए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर 3 छोटे संकल्प लेते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, अपना बैग साथ ले जाएं।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरनमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

0: Liscott Agnell Radio.
1: Kahani Time.
2: Good morning, everyone. This is your Melvin from Inner Voice. I like to say something about dreams that always chase in our lives, because dreams is the one who keeps us motivated and keeps us alive to live in this real challenging world. Likewise, a girl called Shifi, a little girl who is shy and reserved, but she enjoys playing soccer. Her friends and classmates ridicule Shifi for her interest in soccer. Nonetheless, she is determined to pursue her passion and become a successful soccer player. Every day after returning from school, Shifi quickly finishes her homework and practices soccer. Her mother understands the love Shifi has for the sport and supports her in every way. When the inter-school competitions are announced at the school, Shifi decides to participate. She takes part in the selection trials and her classmates mock her once again. But they are shocked when Shifi performs well and judges select her to represent the school. And she was awarded the best player of the tournament. Shifi's commitment and hard work impressed and mewed every person who mocked at her. Dear friends, determination, strong will and focus can help you achieve even the toughest of goals in spite of all ridicule and challenges by others. Let's dream big and chase it to reach our destination. Wishing you all a good day. Thank you.
1: Kahani Time. Inner Voice. Liscott Agnell Radio. Kahani Time.
3: Hello and welcome to Radio Inner Voice. It's Kahani Time. I'm Sunil here with a new story about our busy life. A brilliant and successful executive was traveling down a neighborhood street. Going a bit too fast in his new Jaguar car. He was watching for kids playing out from between.
4: Hello, Miss Scott.
5: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो और मैं हूं सैमुअल और मेरे साथ हैं
6: हिमांशु,
7: नवीन,
8: रोहित।
5: आज है 26 सितंबर और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन।
6: सोचिए, जो हवा आप अभी ले रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जो पानी आप अभी पी रहे हैं क्या वह साफ है? आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक ही है।
9: विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है। इस साल की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य, मजबूत प्रणाली, स्वास्थ्य समुदाय।
10: हमने लिस्कॉट कैंपस में कुछ छात्रों से पूछा, स्वस्थ पर्यावरण का मतलब क्या है?
11: मेरे लिए इसका मतलब है प्रदूषण मुक्त जीवन।
10: और आपको इस विषय में क्या लगता है?
12: मुझे लगता है स्वच्छ जल, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और हरा भरा स्थान।
5: बिल्कुल सही कहा। क्या आप जानते हैं WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,30,00,000 मौतें सिर्फ पर्यावरण कारणों से होती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,
9: पर समाधान हमारे हाथ में है।
6: तो आइए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर तीन छोटे संकल्प लेते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, अपना बैग साथ ले जाएं।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरनमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

0: He was watching for kids playing out from between parked cars and slowed down when he thought he saw something. As his car passed, no children appeared. Instead, a brick smashed into the jack's side door. He slammed on the brakes and spun the jack back to the spot from where the brick had been thrown. He jumped out of the car, grabbed some kid and pushed him against a parked car, shouting, "What was that all about and who are you?" He got angry and asked, "That's a new car and that brick you threw is going to cost a lot of money. Why did you do it?" "Please, mister, please, I'm sorry. I didn't know that what else to do," pleaded the youngster. "I threw the brick because no one else would stop." Tears were dripping down the boy's chin as he pointed around the parked car. "It's my brother," he said. "He rolled off the curb and fell out of his wheelchair, and I can't lift him up." Sobbing, the boy asked executive, "Would you please help me to get him back into the wheelchair? He's hurt and he's too heavy for me." Moved beyond words, the driver tried to swallow the rapidly swelling lump in his throat. He lifted the young man back into the wheelchair and took out his handkerchief and wiped the scabs and cuts, checking to see that everything was going to be okay. "Thank you and God bless you," the grateful child said to him. The man then watched the little boy push his brother down the sidewalk towards their home. It was a long walk back from the man to his Jaguar. A long, slow walk. He never did repair the side door. He kept the dent to remind him not to go through life so fast, so that someone has to throw a brick at you to get your attention. God whispers in your soul and speaks to your heart. Sometimes when you don't have time to listen, He has to throw a brick at you. It's your choice. Listen to the whisper or wait for the brick.
1: Kahani Time. In a voice, Discord, Adnan Radio. हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिस्टर मिशेल और आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो में कहानी टाइम। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया हो और बाद में नुकसान की भरपाई आप ही को देनी पड़ी हो? भाई, मेरी जिंदगी में तो कभी कभी ऐसा हुआ है, और कुछ ऐसा ही हमारे एक कारपेंटर के जिंदगी में भी हुआ। तो चलिए आज के कहानी टाइम में सुनते हैं एक ऐसी ही कारपेंटर की कहानी। कहानी टाइम। तो कहानी टाइम में आइए चलते हैं कारपेंटर के घर की तरफ। तो हमारे इस कारपेंटर का नाम था मन्नू। प्यार से सबजन मन्नू चाचा बुलाते थे। मन्नू चाचा को बहुत सालों का कारपेंट्री में एक्सपीरियंस था और वो रिटायर होने वाले थे। और जिस दिन वो रिटायर होने वाले थे, वो अपने मालिक से मिलने गए। मालिक ने मन्नू चाचा की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, "मन्नू चाचा, मैं जानता हूँ कि आज आपका रिटायर होने का समय आ गया है। आपने मेरे साथ बहुत सालों से काम किया है, आप हमेशा मेरी तरफ वफादार रहे हैं, और आज मैं आपसे एक बिनती करने वाला हूँ." मन्नू चाचा अपने मालिक की तरफ देखता है और बोलता है, "क्या है साहब?" मालिक मन्नू चाचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, "मन्नू चाचा, ये एक आखिरी घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में कारपेंट्री अच्छी तरह से करें। आप करोगे ना, ये आपका आखिरी काम होगा। प्लीज़ मुझे मना मत करना। मन्नू चाचा बड़े दुखी हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, सुख शांति से अपने घर में बैठे रहें, और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नू चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ, पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, मेरा आखिरी दिन था फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं, और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नू चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री ख़त्म कर देते हैं। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती, और ये मन्नू चाचा भी जानते थे। मन्नू चाचा गुस्से में थे, रिटायर तो होना था, जबरदस्ती काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मालिक ये घर देखने आते हैं मन्नू चाचा के काम कंप्लीट होने के बाद, और मालिक एक चाबी का गुच्छा निकालते हैं। मन्नू चाचा काफी देर तक चाबी का गुच्छा देखते हैं। मालिक चाबी का गुच्छा निकालते हैं और मन्नू चाचा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, मन्नू चाचा, ये आपके ईमानदारी का इनाम है। मैंने ये घर और यहाँ की कारपेंट्री सब आपको तोहफे में देने के बारे में सोचा था, और ये रहा आपका तोहफा, ये घर, ये सुंदर सा प्यारा सा घर आपके नाम। मन्नू चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दंग रह जाते हैं कि मालिक ने इतना बड़ा तोहफा दिया। शर्म से उनकी आंखें लेकिन नीचे झुक जाती हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। हमारे साथ भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम समझते हैं कि टेक फॉर ग्रांटेड करना चल जाता है, जिंदगी चलती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ इम्पोर्टेंट चीजों में टेक फॉर ग्रांटेड करना बाद में नुकसानदेही हो जाता है। तो ये थी हमारे आज की कहानी की प्यारी सी सीख। कहानी टाइम। कहानी टाइम।
2: Inner Voice, Miskot, Agnel Radio.
3: Kahani time. Once upon a time, a daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn't know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling. Just as one problem was solved, another one soon followed. Her father, a chef, took her to the kitchen and made her sit there. He filled 3 pots with water and placed them all on a gas with a high flame. Once the water began to boil, he put potatoes in one pot, eggs in the second one, and coffee powder in the third pot. He let them boil without uttering a word to his daughter. The daughter moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. After 20 minutes, he turned off the gas burners and took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He pulled the boiled eggs out and placed them in another bowl. He then ladled the coffee out and placed it in a cup. Turning to her, he asked, "Child, what do you see?" "Potatoes, eggs, and coffee," she hastily replied. "Look closer," he said, "and touch the potatoes." She did, and said, "They have become soft." He then asked her to take an egg and break it. After pulling off the shell, the egg had become hard. Finally, he asked her to sip the coffee. The rich aroma brought a smile to her face. She felt better with a sip of the lovely coffee and asked her father, "Dad, what do you want to tell me?" He then explained that the potatoes, the eggs, and the coffee beans had each faced the same adversity, the boiling water. However, each one reacted differently. The potatoes went in strong, hard, and unrelenting. But in the boiling water, they turned soft, weak, and gullible. The eggs were fragile with the thinner outer shell protecting its liquid interior until it was put in the boiling water. Then the inside of the egg became hard, so hard that even when you peeled, the white and the yolk was tightly intact. They had turned hard against the adversity of life. However, the grounded coffee bean powder was unique.
2: In a voice, Niscott Agnell Radio.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो।
5: मैं हूं एनोश
4: और मैं हूं जेफरी।
5: तो जेफरी, आज मौसम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, क्या कहते हो?
4: हाँ यार, आज कुछ बढ़िया सा सुनने का मन कर रहा है। पुराने एवरग्रीन सॉन्ग सुने क्या?
5: एवरग्रीन सॉन्ग्स? यार तूने मेरे मन की बात कह दी। आज सुबह से ही मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ नॉस्टैल्जिक सुना जाए। तो क्या सुना जाए?
4: तू बता, तेरा फेवरेट कौन सा है?
5: मेरा तो यार एक ही सबसे फेवरेट सॉन्ग है एवरग्रीन्स में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर।

0: ओए जेफ्री, आज रेड शर्ट कैसे पहन के आया? तेरे पीछे कोई सांड नहीं पड़ा क्या?
1: अच्छा, तू खुद पीली पैंट पहन के आ सकता है और मैं रेड शर्ट पहनूं तो तुझे दिक्कत है?
0: यार पीले कलर में क्या दिक्कत है भाई?
1: दिक्कत? पीली पैंट पहन के पीला कद्दू लग रहा है।
0: अबे यार तू उससे लड़ता क्यों रहता है भाई? चल गाने सुनते हैं ना।

0: जुल्फे तेरी।
1: अरे यार पता, जब भी मैं यार चार पांच लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ ना, मेरे से बोला नहीं जाता भाई, घबराहट सी होती है।
0: असलियत तो ये है, घबराता मैं भी हूँ
1: यार। हद है भाई, मैं किससे पूछ रहा हूँ यार।

0: अरे राजा सुन।
1: अरे यार भाई गाना तो मस्त था, लेकिन एक बात बता जेफ्री, तू आज काला काला क्यों नजर आ रहा है?
2: अरे काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है बेटे, इस पे गाने बने हुए हैं, गाने समझा गया?
1: अरे भाई गुस्सा मत कर यार, स्टूडियो का लाइट चला गया था, तू मेरे को दिखा नहीं। चल कोई नहीं, गाने सुनते हैं, यही वाला गाना बजा दे।
3: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं, या अल्लाह काले से डर गए क्या?
0: हमें काले हैं तो...

पाका नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी जाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: अच्छा अनुज, पता चला दिल वाले हम दिल वाले। अच्छा ये बता, तेरे लास्ट ईयर एग्जाम में कितने नंबर आए थे?
1: जितने भी आए हो, पास तो हो गया था ना। लेकिन आज क्यों पूछ रहा है? एग्जाम तो एक साल पहले था।
0: अरे तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू कोरा कागज देख के आया होगा।
1: एटलीस्ट कोरा कागज दिया था, तेरी तरह फादर पे एस से लिखने बोला था और काऊ पे लिख करके तो नहीं आया ना।

0: और अनुष, मैंने गार्गी से सुना है कि तेरे को भूतों से डर लगता है।
1: नहीं नहीं भाई, मुझे भूतों से, अंधेरे से, सुनसान इलाकों से किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है वो बस तेरी शक्ल से।

0: क्या देखता रहता है भाई जेफरी, जाके बात कर रहे हैं ना उससे।
1: नहीं यार, मुझे शर्म आती है।
0: तो दोस्त, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस देखते रहो, देखते ही रहो, हजार चाहे लाख बार देख लो, कुछ नहीं होगा जब तक बात नहीं करोगे।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न

0: अरे अनुष, तूने वादा किया था।
1: क्या वादा किया था?
0: जिम ज्वाइन करेंगे भाई, जिम।
1: यार अगले महीने से करेंगे ना, प्लीज।
0: तू जिस दिन अपना वादा पूरा करेगा ना, उस दिन हम पहाड़ी रखेंगे।
1: पहाड़ी? अरे नहीं भाई नहीं, अगले महीने से पक्का चलेंगे।

0: वाह, क्या गाना था। अच्छा अनुष, ये बताओ ये निब्बा निब्बी क्या होता है?
1: अरे ये सातवीं आठवीं कक्षा के लड़का लड़की होते हैं ना, एक दूसरे को ऐसे कॉल पे बोलते रहते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने क्या किया, या सोना मोना, ये सब। तो इन लोग को निब्बा निब्बी बोलते हैं।
0: अरे इन पर्सन, तू जानते है क्या किसी निब्बा निब्बी को?
1: हाँ हाँ, अपनी क्लास में तो है यार, एक दो है, मैं जानता हूँ। लेकिन तू ये सब पूछ क्यों रहा है?
0: अरे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं, 1970 से शुरू हो गया था। इसका एग्जाम्पल तेरे को ये गाना सुन के पता चल जाएगा।

0: बस यार भाई बहुत हो गया ये शोना मोना।
1: यार ये शोना मोना तो ठीक है, पर इन सब के बीच में जब दूरियां बढ़ जाए तब क्या करना चाहिए?
0: तब तो भाई मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, ये गाना सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है।

0: Hello, Miss Scott.
1: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो और मैं हूं सैमुअल और मेरे साथ हैं
2: हिमांशु,
3: नवीन,
4: रोहित।
1: आज है 26 सितंबर और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन।
2: सोचिए, जो हवा आप अभी ले रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जो पानी आप अभी पी रहे हैं क्या वह साफ है? आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक ही है।
5: विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है। इस साल की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य, मजबूत प्रणाली, स्वास्थ्य समुदाय।
6: हमने निस्कोट कैंपस में कुछ छात्रों से पूछा, स्वस्थ्य पर्यावरण का मतलब क्या है?
7: मेरे लिए इसका मतलब है प्रदूषण मुक्त जीवन।
6: और आपको इस विषय में क्या लगता है?
8: मुझे लगता है स्वच्छ जल, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और हरा भरा स्थान।
1: बिल्कुल सही कहा। क्या आप जानते हैं WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,30,00,000 मौतें सिर्फ पर्यावरण कारणों से होती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,
5: पर समाधान हमारे हाथ में है।
2: तो आइए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर 3 छोटे संकल्प लेते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, अपना बैग साथ ले जाएं।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरनमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे शो
0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: जितना अटपटा ये शो है उससे कहीं ज्यादा अटपटा और चटाकेदार स्ट्रीट फूड है भारत की गलियों में। मरिंडा

0: पड़ जाए। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी डिश जिसके इंग्रेडिएंट्स सुन के आपके पेट और दिमाग दोनों में टर्बुलेंस आ सकता है। सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रही ये डिश का नाम है मैगी मिल्कशेक। नाशिक महाराष्ट्र में मशहूर देसी स्वाद कैफे की स्टार डिश है मैगी मिल्कशेक। मजेदार क्रीमी मिल्कशेक के ऊपर टॉपिंग है मसालेदार वेजिटेबल मैगी की, जिसमें आपको ढूंढने पर मिलेंगे कटी हुई सब्जियां भी। भाई हम में तो दम नहीं है ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन कभी ट्राई करने का, और अगर आप में है तो हमें जरूर जानकारी दें ताकि हम भी जान सकें आखिर भारत की जनता में कितना दम है। आज के कॉलर से जानते हैं उनकी अटपटी डिश के अनुभव के बारे में।
1: हेलो,
0: हाय, स्वागत है आपका फूड डिजास्टर्स पे। मैं किससे बात कर रहा हूँ?
1: हाय मैडम, मेरा नाम गार्गी है और मैं आपको ना अपने एक फूड डिजास्टर एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ।

0: की है, आप जो भी बताएं।
1: नादिर, मैं ना दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे ना पास ही में एक वैरायटी समोसे वाले की दुकान है, और वो वैरायटी समोसे इतनी वैरायटी पे जा चुके हैं कि वो चॉकलेट समोसा बना रहे हैं। अब उस चॉकलेट समोसे को खाने पे इतना गंदा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सोच रहे हो, समोसा जो एक चटपटा है जिसके साथ चटनी मिलती है, हरी चटनी, लाल

0: ही समोसा खा लिया, पनीर समोसा खा लिया, लेकिन चॉकलेट समोसा आपको नहीं लगता ये डिजास्टर है?
1: अरे बाप रे, सुन के तो लगता है कि हॉस्पिटल में लोग पड़े होंगे बस ये समोसा खा के। आपने कब ट्राई किया था और आपको किसने सजेस्ट किया इसके बारे में?
0: मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग ऐसे घूमने निकले थे एक दिन, वहाँ पे वैरायटी समोसे पे हमने मेन्यू चेक करा तो उसमें एक नई चीज ऐड हुई थी और ऊपर से इसको हाईलाइट करके इसके ऊपर एस्ट्रिक बनाया हुआ था चॉकलेट समोसे के नाम का। तो हमने सोचा कि भाई ये क्या नई चीज आई है, चलो ट्राई करते हैं। हमने ट्राई करा, खा लिया, लेकिन एक बाइट लेते ही उसको पूरा फेंकना पड़ा।
1: अरे बाप रे। धन्यवाद गार्गी आपके कॉल के लिए। ऐसी ही कई अनोखी वन इन अ मिलियन डेडली फूड कॉम्बिनेशंस मैं लेकर आऊंगा सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नाडन पिंटो साइनिंग ऑफ।
2: मंजिले अनलिमिटेड।

0: Hello, Miss Scott.
1: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो और मैं हूं सैमुअल और मेरे साथ हैं
2: हिमांशु,
3: नवीन,
4: रोहित।
1: आज है 26 सितंबर और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन।
2: सोचिए, जो हवा आप अभी ले रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जो पानी आप अभी पी रहे हैं क्या वह साफ है? आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक ही है।
5: विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है। इस साल की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य, मजबूत प्रणाली, स्वास्थ्य समुदाय।
6: हमने निस्कोट कैंपस में कुछ छात्रों से पूछा, स्वस्थ पर्यावरण का मतलब क्या है?
7: मेरे लिए इसका मतलब है प्रदूषण मुक्त जीवन।
6: और आपको इस विषय में क्या लगता है?
8: मुझे लगता है स्वच्छ जल, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और हरा भरा स्थान।
1: बिल्कुल सही कहा। क्या आप जानते हैं WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,30,00,000 मौतें सिर्फ पर्यावरण कारणों से होती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,
5: पर समाधान हमारे हाथ में है।
2: तो आइए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर 3 छोटे संकल्प लेते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, अपना बैग साथ ले जाएं।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

0: Hello, Miss Scott.
1: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो और मैं हूं सैमुअल और मेरे साथ हैं
2: हिमांशु,
3: नवीन,
4: रोहित।
1: आज है 26 सितंबर और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन।
2: सोचिए, जो हवा आप अभी ले रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जो पानी आप अभी पी रहे हैं क्या वह साफ है? आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक ही है।
5: विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है। इस साल की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य, मजबूत प्रणाली, स्वास्थ्य समुदाय।
6: हमने निस्कोट कैंपस में कुछ छात्रों से पूछा, स्वस्थ पर्यावरण का मतलब क्या है?
7: मेरे लिए इसका मतलब है प्रदूषण मुक्त जीवन।
6: और आपको इस विषय में क्या लगता है?
8: मुझे लगता है स्वच्छ जल, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और हरा भरा स्थान।
1: बिल्कुल सही कहा। क्या आप जानते हैं, WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,30,00,000 मौतें सिर्फ पर्यावरण कारणों से होती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,
5: पर समाधान हमारे हाथ में है।
2: तो आइए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर 3 छोटे संकल्प लेते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, अपना बैग साथ ले जाएं।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरनमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांघ जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: इंडिया दिल से।
1: गुड मॉर्निंग इंडिया, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ रॉबिन्सन। यहाँ पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहाँ पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
0: दिल से।
1: दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा टाइम इज मनी, लेकिन क्या टाइम सच में मनी है? टाइम केवल पैसे से ही नापा जा सकता है? क्या समय की हमारे लिए कोई और अहमियत नहीं है? एक कहानी मुझे आज यहां पर याद आ रही है, बल्कि एक सचमुच में घटा वाकिया है, और इस वाकिये के जरिए हम देखेंगे कि किस प्रकार समय की जो परिभाषा है टाइम इज मनी, वो हमारे जीवन में बदल सकती है। एक बार एक नौजवान किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया उस जगह पर, तो अपने सभी सर्टिफिकेट साथ में लेकर तैयारी करके उस जगह पर पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर लोग थे, उन्होंने उसे कैबिन में बुला लिया। अंदर जाकर वहां पर सभी लोग जो इंटरव्यू लेने वाले थे बैठे हुए थे, उनके सामने इसने अपनी फाइल बढ़ाई और बैठ गया। इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने जब फाइल खोलकर देखी तो वे काफी खुश हो गए और मन ही मन इसे नौकरी देने का उन्होंने निर्णय कर लिया। फिर उनमें से जो उनका बॉस था, उन्होंने उससे पूछा, आपके इस पढ़ाई के पीछे किसका योगदान है? आपने कैसे इतनी सारी पढ़ाई की? क्या आपके पिता आपको मदद करते थे? तो उस व्यक्ति ने थोड़ी देर मौन रहकर उन्हें कहा, नहीं, मेरे पापा जो है वो तो पहले ही गुजर गए हैं, ये मेरे माँ का योगदान है। मेरी माँ कई जगहों पर जाकर बर्तन माँजा करती थी और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे पढ़ाई करने के लिए मदद की। बॉस ने इसकी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि देखो, नौकरी देनी है या ना देनी है ये बात हम कल डिसाइड करेंगे, तुम कल इसी समय आना और हम आपको बताएंगे कि नौकरी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती, लेकिन उससे पहले आज जब तुम घर जाओगे तब जाकर अपने माँ के हाथों को साफ करना, धोकर साफ करना। इस लड़के को सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगी। क्या बात है, मुझे माँ के हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है? क्या नौकरी पाने का ये कोई नया तरीका है? क्या है ये सब? और इस बातों को सोचते हुए वो घर चला गया। दूसरे दिन उसी समय वो लड़का उस कंपनी में वापस आकर बॉस से मिला और नौकरी के लिए दरखास्त करने लग गया।
2: In a voice, radio.
1: तब उस बॉस ने उससे कहा कि मैं नौकरी तो तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें कल कहा था? तो लड़के ने कहा, हाँ मैंने किया, अपनी माँ के हाथों को मैंने कल धोया। और उस बॉस ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया, क्या मालूम पड़ा? उस लड़के ने कहा, मेरे माँ के हाथों में कई सारी जख्में हो गई थी, काम करते करते मुझे पालते पालते उसने कभी अपने हाथों की परवाह नहीं की। मैं आज इस मुकाम पर जो पहुंचा हूं वो केवल और केवल मेरी माँ के त्याग के कारण है। मैं आज जो बनने वाला हूं या फिर बनना चाहता हूं उसके पीछे मेरे माँ का ही योगदान है। उस बॉस ने उस लड़के को देखकर उससे कहा, अगर मैं चाहता तो तुम्हें नौकरी कल ही दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इस बात से वाकिफ कराना चाहता था कि तुम जो इस मुकाम पे पहुंचे हो वो तुम्हारे इन नंबरों के कारण, इन सर्टिफिकेट्स के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के कारण है। और मुझे खुशी है कि मेरे कंपनी में एक ऐसा लड़का काम करने वाला है जिसे अपने माँ की
3: कदर है।
1: प्यारे दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें कई बातें बताती है। उस औरत को यदि हम ध्यान से उसके बारे में सोचे तो हम पाएंगे कि उसने अपने पूरे समय को अपने बेटे के प्यार के लिए कुर्बान किया। उसने अपना पूरा समय अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए लगाया और उस प्रकार उसने अपने प्यार को अपने बेटे से जताया। यह बेटा जब अपनी माँ के साथ, भले ही बॉस के कहने पे क्यों ना हो, माँ के साथ थोड़ा समय जब इसने बिताया, उसके हाथों को देखा, तो माँ के प्रति, अपने माँ के लिए उसका जो प्यार है वो उमड़ पड़ा। उसे ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने किस हद तक उससे प्यार किया है। प्यारे दोस्तों, कई बार जब हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में ही लगा दी है। इसका असर हमारे बच्चों पे होता है। हम उनके साथ दो पल प्यार से बिताते नहीं हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और आखिर में हमें पता चलता है कि जो बच्चे जिनके लिए हमने ये सब किया है वे भी अभी उस पैसे कमाने की साइकिल में चल पड़े हैं। और ऐसे में आखिरी समय में हम जब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हो, वे हमारे साथ नहीं होते हैं, क्योंकि वे भी समय के उसी चक्र में फंस गए होते हैं जहां पर समय को केवल पैसों में तोला जाता है। समय पैसों में तोलने की चीज नहीं है, समय रिश्तों और प्रेम के तराजू में तोलने की चीज है। इसीलिए दोस्तों, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज रिलेशनशिप, टाइम इज लव।
0: इंडिया दिल से।

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध चल। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांघ जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: Enniscott Agnail Radio. Inner Voice, Enniscott Agnail Radio.
1: दिल से
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉबिन्सन। आपका स्वागत है इंडिया दिल से में। यहां पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहां पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
1: दिल से
2: दोस्तों, कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम दूसरों की कमियां ढूंढने लग जाते हैं, हम दूसरों को नीचे खींचने लग जाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर उनकी कमियों को उनके सामने लाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ यह कि हम अपने आप को उनसे बड़ा दिखा दें और उन्हें नीचे दिखा दें। दोस्तों, मुझे एक वाकया यहाँ पे याद आ रहा है जो कुछ दिनों पहले मैंने बाइबल में पढ़ा था। प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचते हुए उनके एक दूसरे चेले ने, जो उसी गांव का बाशिंदा था, उन्हें अपने चेलों के साथ घर पे खाने पे बुलाया। और जब वे खाने के लिए उस घर में गए, प्रभु यीशु के चेलों ने बिना हाथ धोए खाना खाना शुरू कर दिया। बेचारे भूखे होंगे, कई किलोमीटर की, कई दिनों की यात्रा पूरी करके वे आए होंगे। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, जो आस पड़ोस के लोग प्रभु को देखने के लिए आए थे, उन्होंने आपस में भुनभुनाना शुरू कर दिया। देखिए, चेले एक तरफ खाना खा रहे थे और दूसरे लोग दूसरी तरफ भुनभुना रहे थे। और वे क्या बातें कर रहे थे कि ये कैसे लोग हैं जो बिना हाथ मुंह धोए खाना खाना शुरू कर दिए। उन्हें हाइजीन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बात यह थी कि उनके समाज में उन दिनों यह एक ट्रेडिशन था। यह उनके ट्रेडिशन की बात थी कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आए तो बिना हाथ धोए, बिना शुद्धिकरण किए हुए घर के अंदर जाकर खाना नहीं खा सकता था। और प्रभु यीशु के चेलों ने शुद्धिकरण की इस प्रथा को बिना पूरा किए खाना खाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वे सभी लोग जो वहां पे थे, इस बात से खफा होकर आपस में भुनभुनाने लग गए और उन्होंने प्रभु से कहा कि ये कैसे चेले आपने रखे हैं, आप उन्हें क्यों कुछ चीजें बताते क्यों नहीं है, उन्हें कुछ सिखाते क्यों नहीं है, वे बिना शुद्धिकरण किए हुए, बिना अपने आप को धोए हुए खाना खाना शुरू कर दिए। तब प्रभु ने उन्हें कहा कि मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए।
0: Inner Voice Radio।
2: प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा वाकिया है, लेकिन इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। शुद्धिकरण केवल बाहरी रूप से करने से वो शुद्धिकरण नहीं कहलाता है, वो केवल स्वच्छता कहलाती है, वो एक हाइजीन का प्रोसेस बन जाता है, लेकिन शुद्धिकरण उसे हम नहीं कह सकते। इसके तीन पड़ाव हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो शुद्धिकरण के तीन पड़ाव हम सोच सकते हैं। पहले, विचारों का शुद्धिकरण। यदि हमारे विचारों में शुद्धि है तो वह शुद्धि हमारे शब्दों में भी आएगी। विचारों का शुद्धिकरण यानी हम कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स। वी हैव टू प्यूरिफाई आवर थॉट्स एंड इंटेंशंस। यदि हमारे विचार, हमारे थॉट और इंटेंशन शुद्ध है, तो उसका अगला पड़ाव जो है, हमारे शब्द वे भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों का शुद्धिकरण हमारे शब्दों के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। हमारे इंटेंशन का शुद्धिकरण हमारे आचारों के, हमारे एक्शंस के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। तो देखिए, हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे शब्द शुद्ध होंगे, और शब्द शुद्ध होंगे तो आगे चलकर हमारे आचार यानी हमारे कार्यकलाप, हमारे एक्शंस भी शुद्ध होंगे। सो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। वी सी प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स और इंटेंशंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्शंस। और जब हमारे एक्शंस प्योर हो जाएंगे तो हम अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रेम बांटते फिरेंगे, और वहां पर हम देख सकेंगे कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं। वहां पर सभी प्रकार की कमियों को हम भूल जाएंगे। यदि किसी के अंदर कोई कमी भी है तो हमारे कार्यों, विचारों और शब्दों की शुद्धि होने के कारण हम उस कमी को अच्छाई में बदल सकते हैं। हम अपने उस भाई को या बहन को उस कमी से उभरने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने आचरण में शुद्धता लाएं, ताकि प्रेम के हम साक्षी बन सके। तो ये थी दास्तानें मोहब्बत इंडिया दिल से में। कल फिर मिलेंगे एक नई दास्तां के साथ, एक नए विचार के साथ, जो हमें मोहब्बत में, प्रेम में, प्यार में आगे बढ़ते रखे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आपके दोस्त, आपके होस्ट रॉबिन्सन को। बाय बाय।
1: इंडिया दिल से।

0: Hello everyone, you are listening to Radio Inner Voice. I am Sunil here with you. One rainy afternoon, I was driving along one of the main streets of the town, taking extra precautions necessary when the roads are wet and slick. Suddenly, my friend Blessie spoke up from her relaxed position in the front seat. "I'm thinking of something." This announcement usually meant that she is hungry and need to get into some restaurants. But today she looked a bit serious. "What are you thinking?" I asked. I was eager to hear something other than "I am hungry." "The rain," she began. "It's like negativities and the windshield wipers are like God." "The rain," she began, "is like negativities and the windshield wipers are like God, wiping our sins away." After the chill bumps raised up my arms, I was able to respond, "That's really good." Then my curiosity broke in. How far would my friend take this revelation? So I asked, "Do you notice how the rain keeps on coming? What does that tell you?" Blessie did not hesitate one moment with her answer. "We keep on bringing negativities into our lives, and God just keeps us positive. I will always remember this whenever I turn on my wipers." Isn't it comforting to know that God does keep forgiving us and keeps us positive? That all we have to do is ask Him to come into our lives and He will keep...
1: Hello, Miss Scott.
2: Good morning. आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो और मैं हूं सैमुअल और मेरे साथ हैं
3: हिमांशु,
4: नवीन,
5: रोहित।
2: आज है 26 सितंबर और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन।
3: सोचिए, जो हवा आप अभी ले रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जो पानी आप अभी पी रहे हैं क्या वह साफ है? आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक ही है।
6: विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है। इस साल की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य, मजबूत प्रणाली, स्वास्थ्य समुदाय।
7: हमने निस्कोट कैंपस में कुछ छात्रों से पूछा, स्वस्थ पर्यावरण का मतलब क्या है?
8: मेरे लिए इसका मतलब है प्रदूषण मुक्त जीवन।
7: और आपको इस विषय में क्या लगता है?
9: मुझे लगता है स्वच्छ जल, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और हरा भरा स्थान।
2: बिल्कुल सही कहा। क्या आप जानते हैं WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,30,00,000 मौतें सिर्फ पर्यावरण कारणों से होती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,
6: पर समाधान हमारे हाथ में है।
3: तो आइए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर 3 छोटे संकल्प लेते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, अपना बैग साथ ले जाएं।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

Funny time. In a voice, Miskot Adnal Radio. Kahani time. Hello, dosto. Main hoon Sister Michelle aur aap sun rahe hain In a voice radio mein Kahani time. आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया हो और बाद में नुकसान की भरपाई आप ही को देनी पड़ी हो? भाई मेरी जिंदगी में तो कभी कभी ऐसा हुआ है और कुछ ऐसा ही हमारे एक कारपेंटर की जिंदगी में भी हुआ। तो चलिए आज के कहानी टाइम में सुनते हैं एक ऐसी ही कारपेंटर की कहानी। तो कहानी टाइम में आइए चलते हैं कारपेंटर के घर की तरफ। तो हमारे इस कारपेंटर का नाम था मन्नू। प्यार से सबजन मन्नू चाचा बुलाते थे। मन्नू चाचा को बहुत सालों का कारपेंटरी में एक्सपीरियंस था और वो रिटायर होने वाले थे। और जिस दिन वो रिटायर होने वाले थे वो अपने मालिक से मिलने गए। मालिक ने मन्नू चाचा की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, मन्नू चाचा मैं जानता हूं कि आज आपका रिटायर होने का समय आ गया है। आपने मेरे साथ बहुत सालों से काम किया है, आप हमेशा मेरी तरफ वफादार रहे हैं और आज मैं आपसे एक बिनती करने वाला हूं। मन्नू चाचा अपने मालिक की तरफ देखता है और बोलता है, क्या है साहब? मालिक मन्नू चाचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मन्नू चाचा ये एक आखिरी घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में कारपेंट्री अच्छी तरह से करें। आप करोगे ना, ये आपका आखिरी काम होगा, प्लीज मुझे मना मत करना। मन्नू चाचा बड़े दुखी हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, सुख शांति से अपने घर में बैठे रहें और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नू चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ, पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, मेरा आखिरी दिन था फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं, और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नू चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री ख़त्म कर देते हैं। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती और ये मन्नू चाचा भी जानते थे। मन्नू चाचा गुस्से में थे, रिटायर तो होना था, ज़बरदस्ती काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मालिक ये घर देखने आते हैं मन्नू चाचा के काम कंप्लीट होने के बाद और मालिक एक चाबी का गुच्छा निकालते हैं। मन्नू चाचा काफी देर तक चाबी का गुच्छा देखते हैं। मालिक चाबी का गुच्छा निकालते हैं और मन्नू चाचा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, मन्नू चाचा ये आपके ईमानदारी का इनाम है, मैंने ये घर और यहाँ की कारपेंट्री सब आपको तोहफे में देने के बारे में सोचा था और ये रहा आपका तोहफा, ये घर, ये सुंदर सा प्यारा सा घर आपके नाम। मन्नू चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दंग रह जाते हैं कि मालिक ने इतना बड़ा तोहफा दिया। शर्म से उनकी आंखें लेकिन नीचे झुक जाती हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। हमारे साथ भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम समझते हैं कि टेक फॉर ग्रांटेड करना चल जाता है, जिंदगी चलती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ इम्पॉर्टेंट चीजों में टेक फॉर ग्रांटेड करना बाद में नुकसानदेही हो जाता है। तो ये थी हमारे आज की कहानी की प्यारी सी सीख। कहानी टाइम।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

0: No one else would stop. Tears were dripping down the boy's chin as he pointed around the parked car. "It's my brother," he said. "He rolled off the curb and fell out of his wheelchair, and I can't lift him up." Sobbing, the boy asked executive, "Would you please help me to get him back into the wheelchair? He's hurt and he's too heavy for me." Moved beyond words, the driver tried to swallow the rapidly swelling lump in his throat. He lifted the young man back into the wheelchair and took out his handkerchief and wiped the scabs and cuts, checking to see that everything was going to be okay. "Thank you, and God bless you," the grateful child said to him. The man then watched the little boy push his brother down the sidewalk towards their home. It was a long walk back from the man to his Jaguar, a long, slow walk. He never did repair the side door. He kept the dent to remind him not to go through life so fast, so that someone has to throw a brick at you to get your attention. God whispers in your soul and speaks to your heart. Sometimes when you don't have time to listen, He has to throw a brick at you. It's your choice. Listen to the whisper or wait for the brick. Kahani
1: Time. Inner Voice. Discord. Adnan Radio. कहानी टाइम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिस्टर मिशेल और आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो में कहानी टाइम। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया हो और बाद में नुकसान की भरपाई आप ही को देनी पड़ी हो? भाई, मेरी जिंदगी में तो कभी कभी ऐसा हुआ है, और कुछ ऐसा ही हमारे एक कारपेंटर के जिंदगी में भी हुआ। तो चलिए आज के कहानी टाइम में सुनते हैं एक ऐसी ही कारपेंटर की कहानी। कहानी टाइम। तो कहानी टाइम में आइए चलते हैं कारपेंटर के घर की तरफ। तो हमारे इस कारपेंटर का नाम था मन्नू। प्यार से सबजन मन्नू चाचा बुलाते थे। मन्नू चाचा को बहुत सालों का कारपेंट्री में एक्सपीरियंस था और वो रिटायर होने वाले थे। और जिस दिन वो रिटायर होने वाले थे, वो अपने मालिक से मिलने गए। मालिक ने मन्नू चाचा की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, मन्नू चाचा, मैं जानता हूँ कि आज आपका रिटायर होने का समय आ गया है। आपने मेरे साथ बहुत सालों से काम किया है, आप हमेशा मेरी तरफ वफादार रहे हैं, और आज मैं आपसे एक बिनती करने वाला हूँ। मन्नू चाचा अपने मालिक की तरफ देखता है और बोलता है, क्या है साहब? मालिक मन्नू चाचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मन्नू चाचा, ये एक आखिरी घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में कारपेंट्री अच्छी तरह से करें। आप करोगे ना, ये आपका आखिरी काम होगा, प्लीज़ मुझे मना मत करना। मन्नू चाचा बड़े दुखी हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, सुख शांति से अपने घर में बैठे रहें, और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नू चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ। पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, मेरा आखिरी दिन था, फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं, और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नू चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री ख़त्म कर देते हैं। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती, और ये मन्नू चाचा भी जानते थे। मन्नू चाचा

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरनमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

0: Hello, Miss Scott.
1: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो और मैं हूं सैमुअल और मेरे साथ हैं
2: हिमांशु,
3: नवीन,
4: रोहित।
1: आज है 26 सितंबर और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन।
2: सोचिए, जो हवा आप अभी ले रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जो पानी आप अभी पी रहे हैं क्या वह साफ है? आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक ही है।
5: विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है। इस साल की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य, मजबूत प्रणाली, स्वास्थ्य समुदाय।
6: हमने निस्कोट कैंपस में कुछ छात्रों से पूछा, स्वास्थ्य पर्यावरण का मतलब क्या है?
7: मेरे लिए इसका मतलब है प्रदूषण मुक्त जीवन।
6: और आपको इस विषय में क्या लगता है?
8: मुझे लगता है स्वच्छ जल, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और हरा भरा स्थान।
1: बिल्कुल सही कहा। क्या आप जानते हैं WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,30,00,000 मौतें सिर्फ पर्यावरण कारणों से होती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,
5: पर समाधान हमारे हाथ में है।
2: तो आइए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर 3 छोटे संकल्प लेते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, अपना बैग साथ ले जाएं।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

0: Hello, Miss Scott.
1: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो और मैं हूं सैमुअल और मेरे साथ हैं
2: हिमांशु,
3: नवीन,
4: रोहित।
1: आज है 26 सितंबर और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन।
2: सोचिए, जो हवा आप अभी ले रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जो पानी आप अभी पी रहे हैं क्या वह साफ है? आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक ही है।
5: विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है। इस साल की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य, मजबूत प्रणाली, स्वास्थ्य समुदाय।
6: हमने निस्कोट कैंपस में कुछ छात्रों से पूछा, स्वस्थ पर्यावरण का मतलब क्या है?
7: मेरे लिए इसका मतलब है प्रदूषण मुक्त जीवन।
6: और आपको इस विषय में क्या लगता है?
8: मुझे लगता है स्वच्छ जल, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और हरा भरा स्थान।
1: बिल्कुल सही कहा। क्या आप जानते हैं WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,30,00,000 मौतें सिर्फ पर्यावरण कारणों से होती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,
5: पर समाधान हमारे हाथ में है।
2: तो आइए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर 3 छोटे संकल्प लेते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, अपना बैग साथ ले जाएं।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरनमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

0: That brick you threw is going to cost a lot of money. Why did you do it? Please, mister, please, I'm sorry. I didn't know that what else to do, pleaded the youngster. I threw the brick because no one else would stop. Tears were dripping down the boy's chin as he pointed around the parked car. It's my brother, he said. He rolled off the curb and fell out of his wheelchair, and I can't lift him up. Sobbing, the boy asked executive, would you please help me to get him back into the wheelchair? He's hurt and he's too heavy for me. Moved beyond words, the driver tried to swallow the rapidly swelling lump in his throat. He lifted the young man back into the wheelchair and took out his handkerchief and wiped the scabs and cuts, checking to see that everything was going to be okay. Thank you and God bless you, the grateful child said to him. The man then watched the little boy push his brother down the sidewalk towards their home. It was a long walk back from the man to his Jaguar, a long, slow walk. He never did repair the side door. He kept the dent to remind him not to go through life so fast, so that someone has to throw a brick at you to get your attention. God whispers in your soul and speaks to your heart. Sometimes when you don't have time to listen, He has to throw a brick at you. It's your choice. Listen to the whisper or wait for the brick. Kahani Time.
1: Inner Voice. Mascot Admiral Radio. कहानी टाइम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिस्टर मिशेल और आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो में कहानी टाइम। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया हो और बाद में नुकसान की भरपाई आप ही को देनी पड़ी हो? भाई, मेरी जिंदगी में तो कभी कभी ऐसा हुआ है, और कुछ ऐसा ही हमारे एक कारपेंटर के जिंदगी में भी हुआ। तो चलिए आज के कहानी टाइम में सुनते हैं एक ऐसी ही कारपेंटर की कहानी। कहानी टाइम। तो कहानी टाइम में आइए चलते हैं कारपेंटर के घर की तरफ। तो हमारे इस कारपेंटर का नाम था मन्नू। प्यार से सबजन मन्नू चाचा बुलाते थे। मन्नू चाचा को बहुत सालों का कारपेंट्री में एक्सपीरियंस था और वो रिटायर होने वाले थे। और जिस दिन वो रिटायर होने वाले थे, वो अपने मालिक से मिलने गए। मालिक ने मन्नू चाचा की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, मन्नू चाचा, मैं जानता हूँ कि आज आपका रिटायर होने का समय आ गया है। आपने मेरे साथ बहुत सालों से काम किया है, आप हमेशा मेरी तरफ वफादार रहे हैं, और आज मैं आपसे एक बिनती करने वाला हूँ। मन्नू चाचा अपने मालिक की तरफ देखता है और बोलता है, क्या है साहब? मालिक मन्नू चाचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मन्नू चाचा, ये एक आखिरी घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में कारपेंट्री अच्छी तरह से करें। आप करोगे ना, ये आपका आखिरी काम होगा, प्लीज मुझे मना मत करना। मन्नू चाचा बड़े दुखी हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, सुख शांति से अपने घर में बैठे रहें, और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नू चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ, पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, मेरा आखिरी दिन था, फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं, और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नू चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री खत्म कर देते। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती, और ये मन्नू चाचा भी जानते थे। मन्नू चाचा गुस्से में थे, रिटायर तो होना था, जबरदस्ती काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मालिक ये घर देखने आते हैं मन्नू चाचा के काम कंप्लीट होने के बाद, और मालिक एक चाबी का गुच्छा निकालते हैं। मन्नू चाचा काफी देर तक चाबी का गुच्छा देखते हैं। मालिक चाबी का गुच्छा निकालते हैं और मन्नू चाचा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, मन्नू चाचा ये आपके ईमानदारी का इनाम है। मैंने ये घर और यहाँ की कारपेंट्री सब आपको तोहफे में देने के बारे में सोचा था, और ये रहा आपका तोहफा, ये घर, ये सुंदर सा प्यारा सा घर आपके नाम। मन्नू चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दंग रह जाते हैं कि मालिक ने इतना बड़ा तोहफा दिया। शर्म से उनकी आंखें लेकिन नीचे झुक जाती हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। हमारे साथ भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम समझते हैं कि टेक फॉर ग्रांटेड करना चल जाता है, जिंदगी चलती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ इम्पॉर्टेंट चीजों में टेक फॉर ग्रांटेड करना बाद में नुकसानदेही हो जाता है। तो ये थी हमारे आज की कहानी की प्यारी सी सीख। कहानी टाइम।
2: Inner Voice, Miskot, Agnell Radio.
3: Kahani Time. Once upon a time, a daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn't know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling. Just as one problem was solved, another one soon followed. Her father, a chef, took her to the kitchen and made her sit there. He filled 3 pots with water and placed them all on a gas with a high flame. Once the water began to boil, he put potatoes in one pot, eggs in the second one, and coffee powder in the third pot. He let them boil without uttering a word to his daughter. The daughter moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. After 20 minutes, he turned off the gas burners and took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He pulled the boiled eggs out and placed them in another bowl. He then ladled the coffee out and placed it in a cup. Turning to her, he asked, "Child, what do you see?" "Potatoes, eggs, and coffee," she hastily replied. "Look closer," he said, "and touch the potatoes." She did, and said, "They have become soft." He then asked her to take an egg and break it. After pulling off the shell, the egg had become hard. Finally, he asked her to sip the coffee. The rich aroma brought a smile to her face. She felt better with a sip of the lovely coffee and asked her father, "Dad, what do you want to tell me?" He then explained that the potatoes, the eggs, and the coffee beans had each faced the same adversity, the boiling water. However, each one reacted differently. The potatoes went in strong, hard, and unrelenting. But in the boiling water, they turned soft, weak, and gullible. The eggs were fragile with the thinner outer shell protecting its liquid interior until it was put in the boiling water. Then the inside of the egg became hard, so hard that even when you peeled, the white and the yolk was tightly intact. They had turned hard against the adversity of life. However, the grounded coffee bean powder was unique. When it was exposed to the boiling water, it mingled, changed the water, and created something new. The blending was perfect, and the aroma, tempting. The outcome, refreshing. Which of these are you? He asked his daughter. When adversity knocks on your door, how do you respond? You become soft and give up? Hard and unsympathetic? Or take the challenge and emerge transformed as a hero? Life sometimes throws muck at you. Are you a potato, an egg, or a coffee bean? Kahani time.
2: Miskot Agnel Radio.
3: Kahani Time.
0: Hello everyone, welcome to Kahani Time. You are listening to Radio Inner Voice. I am Sunil here with you. My friend Kate was going with Peter, an elderly priest, when he stopped for a moment to listen to a bunch of elderly American ladies who were discussing seriously about something. He looked amused and he asked Kate, "Did you hear anything that these ladies were talking about?" "No, Father, I was not paying attention," she said. Well, each one was explaining to others how she manages to save energy. One does her laundry in a certain way to save so much energy. The other does her cooking that way. Another does her shopping that way, etc. Each one was competing to have the best formula for doing her work, spending the least amount of energy possible. So they have more free time and more energy saved up. Then, joking, he added with a mischievous look, "I really wonder what they will do with all that extra energy when they are lying in their coffin. You know, when I die, I hope that no one can squeeze out another drop of energy from me." He walked a bit ahead, turned around and said, "And what about you?" This question for all of us today. We do have a lot of energy without spending on anything. The energy to love, energy to help someone, to contribute something that which makes this world better. It is good to spend ourselves.
4: Hello, Miss Scott.
5: Good morning. आप सुन रहे हैं Inner Voice Radio और मैं हूं Samuel और मेरे साथ हैं
6: Himanshu,
7: Naveen,
8: Rohit.
5: आज है 26th September और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे. आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन.
6: सोचिए, जो हवा आप अभी ले रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जो पानी आप अभी पी रहे हैं क्या वह साफ है? आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक ही है.
9: विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है. इस साल की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य मजबूत प्रणाली स्वास्थ्य समुदाय.
10: हमने निस्कोट कैंपस में कुछ छात्रों से पूछा, स्वस्थ पर्यावरण का मतलब क्या है?
11: मेरे लिए इसका मतलब है प्रदूषण मुक्त जीवन.
10: और आपको इस विषय में क्या लगता है?
12: मुझे लगता है स्वच्छ जल, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और हरा भरा स्थान.
5: बिल्कुल सही कहा. क्या आप जानते हैं WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,30,00,000 मौतें सिर्फ पर्यावरण कारणों से होती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,
9: पर समाधान हमारे हाथ में है। तो आइए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर 3 छोटे संकल्प लेते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, अपना बैग साथ ले जाएं।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरनमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

0: Hello, Miss Scott.
1: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो और मैं हूं सैमुअल और मेरे साथ हैं
2: हिमांशु,
3: नवीन,
4: रोहित।
1: आज है 26 सितंबर और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन।
2: सोचिए, जो हवा आप अभी ले रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जो पानी आप अभी पी रहे हैं क्या वह साफ है? आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक ही है।
5: विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है। इस साल की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य, मजबूत प्रणाली, स्वास्थ्य समुदाय।
6: हमने निस्कोट कैंपस में कुछ छात्रों से पूछा, स्वस्थ पर्यावरण का मतलब क्या है?
7: मेरे लिए इसका मतलब है प्रदूषण मुक्त जीवन।
6: और आपको इस विषय में क्या लगता है?
8: मुझे लगता है स्वच्छ जल, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और हरा भरा स्थान।
1: बिल्कुल सही कहा। क्या आप जानते हैं, WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,30,00,000 मौतें सिर्फ पर्यावरण कारणों से होती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,
5: पर समाधान हमारे हाथ में है।
2: तो आइए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर 3 छोटे संकल्प लेते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, अपना बैग साथ ले जाएं।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरमेंट, हेल्थी पीपल। इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

0: Hello, Miss Scott.
1: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो और मैं हूं सैमुअल और मेरे साथ हैं
2: हिमांशु,
3: नवीन,
4: रोहित।
1: आज है 26 सितंबर और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन।
2: सोचिए, जो हवा आप अभी ले रहे हैं क्या वह सुरक्षित है? जो पानी आप अभी पी रहे हैं क्या वह साफ है? आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक ही है।
5: विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है। इस साल की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य, मजबूत प्रणाली, स्वास्थ्य समुदाय।
6: हमने निस्कोट कैंपस में कुछ छात्रों से पूछा, स्वस्थ पर्यावरण का मतलब क्या है?
7: मेरे लिए इसका मतलब है प्रदूषण मुक्त जीवन।
6: और आपको इस विषय में क्या लगता है?
8: मुझे लगता है स्वच्छ जल, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और हरा भरा स्थान।
1: बिल्कुल सही कहा। क्या आप जानते हैं, WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 1,30,00,000 मौतें सिर्फ पर्यावरण कारणों से होती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,
5: पर समाधान हमारे हाथ में है।
2: तो आइए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर 3 छोटे संकल्प लेते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, अपना बैग साथ ले जाएं।

तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, हेल्थी एनवायरमेंट, हेल्थी पीपल, इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।

0: rolled off the curb and fell out of his wheelchair, and I can't lift him up. Sobbing, the boy asked executive, "Would you please help me to get him back into the wheelchair? He's hurt and he's too heavy for me." Moved beyond words, the driver tried to swallow the rapidly swelling lump in his throat. He lifted the young man back into the wheelchair and took out his handkerchief and wiped the scabs and cuts, checking to see that everything was going to be okay. "Thank you and God bless you," the grateful child said to him. The man then watched the little boy push his brother down the sidewalk towards their home. It was a long walk back from the man to his Jaguar. A long, slow walk. He never did repair the side door. He kept the dent to remind him not to go through life so fast, so that someone has to throw a brick at you to get your attention. God whispers in your soul and speaks to your heart. Sometimes when you don't have time to listen, He has to throw a brick at you. It's your choice. Listen to the whisper or wait for the brick.
1: Kahani time. In a voice, Miskot Adnal Radio. हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिस्टर मिशेल और आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो में कहानी टाइम। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया हो और बाद में नुकसान की भरपाई आप ही को देनी पड़ी हो? भाई, मेरी जिंदगी में तो कभी कभी ऐसा हुआ है, और कुछ ऐसा ही हमारे एक कारपेंटर के जिंदगी में भी हुआ। तो चलिए आज के कहानी टाइम में सुनते हैं एक ऐसी ही कारपेंटर की कहानी। कहानी टाइम। तो कहानी टाइम में आइए चलते हैं कारपेंटर के घर की तरफ। तो हमारे इस कारपेंटर का नाम था मन्नू। प्यार से सबजन मन्नू चाचा बुलाते थे। मन्नू चाचा को बहुत सालों का कारपेंट्री में एक्सपीरियंस था और वो रिटायर होने वाले थे। और जिस दिन वो रिटायर होने वाले थे, वो अपने मालिक से मिलने गए। मालिक ने मन्नू चाचा की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, "मन्नू चाचा, मैं जानता हूँ कि आज आपका रिटायर होने का समय आ गया है। आपने मेरे साथ बहुत सालों से काम किया है, आप हमेशा मेरी तरफ वफादार रहे हैं, और आज मैं आपसे एक बिनती करने वाला हूँ। मन्नू चाचा अपने मालिक की तरफ देखता है और बोलता है, "क्या है साहब?" मालिक मन्नू चाचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, "मन्नू चाचा, ये एक आखिरी घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में कारपेंट्री अच्छी तरह से करें। आप करोगे ना, ये आपका आखिरी काम होगा। प्लीज़ मुझे मना मत करना." मन्नू चाचा बड़े दुखी हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, सुख शांति से अपने घर में बैठे रहें, और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नू चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ। पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, "मेरा आखिरी दिन था, फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं," और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नू चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री ख़त्म कर देते हैं। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती, और ये मन्नू चाचा भी जानते थे। मन्नू चाचा गुस्से में थे, रिटायर तो होना था, जबरदस्ती काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मालिक ये घर देखने आते हैं मन्नू चाचा के काम कंप्लीट होने के